कै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा। बिनौ करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगै कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया। रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। उडे उड आवे सै कोसा, तिस पछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न परावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह है सब त्यावह है तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी।

अंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी।

अंता तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता।

तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई।

तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिस

समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाऊ ना हो जती सती नहीं पड़या,

कितै ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जा

भाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहुत।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, ओथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सह

सत्संग है जी। बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बाजपुरी पाचे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दर्द तेंतर के खालसा से बोलो जी। वाहे गुरु महाराज आप जी ने पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुकते हटियां जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वंड चकिया देख चलाई ते वाही देख के निड कीता तेना प्यारे त्यारा नी कमाई दा तेंतर की बोलो जी। वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाईया चरखिया चढ़े आ रहे ना चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा से किसी दिखे सब सत्संग निभाया तिना नी कमाई दा तेंतर की बोलो जी। वाहे गुरु गुरुद्वार अंदर ते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु।

आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दता जो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे कुरता जिन्हों तो आप जो पंथ छोड़िया गया है उन्हों के खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी बख्शो। हे न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार दोए कर जोड़ करम अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास में दतार पिता जी आप जी ने बख्शिश की है आप चरणा पितर गुरबाणी सुखमी साहब के संपूर्ण पाठ दतार ऐस वे संध्या समा जान के आप चरणा सोधदार रह रास साहब ने पाठ किए कृपा करो हुईया भुला चुकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदन जो सांझी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी आप जी बख्शिया दातों विचों पितर कड़ाब शादी देगा तैयार करके हाथ दतार आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद सा संगत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार मेहनत करे पातशाह जी इन्ह खुशियों में आप दिन बख्शिया दातों विचों पितर कड़ाब शाह जी देगा तैयार करे हद दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साह संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जा पितर नाम जो बख्श करो तार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो तार आप दख्शिया दातों जो लंगर तुर सवारी प्रवान करनी आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अच्छे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वेड़े तो लैके दर से आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिख के लाओ संगत का दर से तेरे पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार जी दूर दराज कर बैठिया लाइव कथा की सरण कर रही हैं सारी संगत की हाजरी प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत का दर से तेरे पेटा प्रवान गरीब नवाज करो। गरीब नवाज आपने संगत उद्यम बख्शे ने आप जाना धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेअंत माए ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगलता संगत माए पेटा कारी चैनल प्रवान करो बशा सब दमाइया सबल करो कार्यवाद मददार सात संगत शुभकामना समाधान पूरी करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो मेहनत कर बख्शिश करो खालसा पंथ सिख कौम एक तत्वाग प्यार की बख्शी करके सतविदास बख्शो चैनल जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्श कर दतार हर मैदान जवान फतेह बख्शा की पारदा करो गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो जी सेवा प्रवान करो भुला चुका नि माही बख्शो पितर गुना में बख्श परंत आज दिशा में कथक निर्वाह जमता वास्ते आगा बख्शो रहते काल सवार के झरना धनवादी बनाओ सही प्यारे मेरे दिल अपने आपका नाम चेतावे नानक नाम तेरे भाने सरबत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा अग्ञा भई अकाल के तभी चलाए हो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में

0: ताकौ धोखा कहा ब्यापै जाकौ ओट तुहारी। हर बिसरत सदा खुआरी। ताकौ धोखा कहा ब्यापै जाकौ ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलहारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरी। ताको धोखा कहा ब्यापै जाको ओट तुहारी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। अवसत का जो शास्त्र जी मारे कृपा की आप श्रद्धा पाम सत पुत्र गुरबाणी सुख साहब संपूर्ण पाठ सर्व कीते ने। इस वे संध्या समा जान के सोदा रास साहब के पाठ सर्व कीते हैं। अरदास साहब जी भरिया ने मारे बख्शे पुत्र गुरु सर्व कीते हैं। सत्संग अज दस पाठ गुरु साहब ने आप गुरु आत्मा वन बख्शिश किया है। सत्संग जी आप सुन बार बार बेनती है हर रोज जरूर गुर कराया करो। आओ मत टेको अरदास करो जिनी देर तक चाहो। सत्संग जी महाराज निकी हो बैठ कर कथा के दरबार सर्व कर सकते हो। पता है कि गुरु घर नार साल साउथ हाल जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उस बेअंत संगत हिस्सा पा रही ने जिन्होंने अपना दसवन सफल किया है बटभागे हैं। सात सिंह जिन्हें जिन्हें अज तक अपना दसवन सफल नहीं किया जिन्हें माया दी उन्होंने सारे बेनती है जरूर गुरु घर आओ मैं को अरदास करो। तो जिनी दे अपने वालों माया दे सकते हो अपने हिम्मत के मुताबिक वह जरूर अपना दसवन सफल करते हैं। माया दो गुरु की खुशियां प्राप्त करो। सात सिंह जी असल तेन पता है कि सहज पाठ लड़ीवार हो रहे हैं। इन्होंने भोग पैण गुरु अर्जन देव के पातशाह जी देसी जी दिवस के नेड़े सो जे भी घर माई भाई सहज पाठ न कर रहे उन्होंने सारे बेनती है कि अपने नाम और नंबर भाई रजिंद्र सिंह जी अपना मंगसान लिखा दो ताकि भी सारी अरदास होर दूजिया संगतों के नाल हो जाएगी। तो सात सिंह जी आपसे तेन बेनती है कि 27 तो लैके 31 तक कीर्तन करे भाई साहब भाई रजिंद्र सिंह जी श्रीनगर वाले। तो सारी संगत बेनती है कि जरूर इस समय हाजिर पर रहो। तो जून 2 नूं है जन्म संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडर वाले का जन्मदिन। तो उस दिन सारी संगत जरूर हाजरी पर उन्होंने जो साढ़े वास्ते किया उसने उन्होंने धन्यवाद करिए। सत्संग जी जून 4 नूं है अटैक ऑन अकाल तख्त 1984 यूनिवर्सिटी या घलूघारा भी कह सकते हैं। तो उस समय जिन्हें जिन्होंने वो अखी वेखी और वेख्या जो चलिया तो उन्होंने पता है सत्संग जी। तो वो बहुत भयानक समा से गुरु साहबां ने आप अंग संग होकर अपने सेवक की रखा बख्शी की है। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि उस दिन जरूर हाजरी पर उस समय के शहीद होए सिंह सिंह वास्ते अभी सारे मिलकर अरदास करिए उन्होंने झांडी भेंट करिए। तो सत्संग जी आओ भाई साहब तैयार हो कि रम करने सू करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै हरिया अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख

जन्म हम कालख धोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई।

पौड़ी बाहर भेख न पाईऐ प्रभ अंतर जामी इकस हर जीव बाहरी सब फिरे नेकामी मन रत्ता कुटंब स्यों नित

हार तिस की कामी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज समुची मानवता दे रहबर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दातार जी दी पाक पवित्र हदूद अंदर हजूरी अंदर शामा दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हां जो सतगुरां ने प्रेरणा बख्शिश करके उदम बख्शिश करके अपने चरणा दी हाजरी प्रवाई है। संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। प्यार सहत भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी रसीला तिन्हां दे जत्थे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवन कीता है। आओ इस तो उपरंत जो निता प्रति आपां सतगुरां दी अमृत बाणी मारू की वार जो पंचम पातशाह जी दी उचारण कीती गई है उस दी तरतीब सहत लड़ी सहत विचार करदे आ रहे हां। कल चौदहवीं पौड़ी नाल संबंधित दो श्लोकां दी विचार आपां कीती सी। अज तीसरे श्लोक दी अते पौड़ी दी विचार करनी है क्योंकि वार दा जो केंद्री भाव हुंदा है वह सारा पौड़ी दे दिवाले घूमदा है। जां इउं कहीए भी हर पौड़ी श्लोकां दी व्याख्या करदी है वार दी व्याख्या करदी है। सो गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दी इस पावन वार दी अज चौदहवीं पौड़ी अते एक श्लोक जो विचार अधीन है उस दी आपां विचार करनी है। कल दो श्लोकां दी विचार कीती सी जिन्हां दा भाव सतगुरां ने यह दर्शाया सी कि हे भाई अपने मन विच उस नूं पक्कियां कर जो स्थिर है जो अविनाशी है जो अविचल है। जो कुछ मन विच पकड़िया होया वो सब चलायमान है मिटन वाला है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर हर एक अंदर विराजमान है। जिवें सारे घटां विच चंद्रमा वसदा है इसे तरह हर हिरदे विच परमात्मा दी जोत प्रकाशमान है। बस उस नूं अपने हिरदे विच धारण कर लईए पक्का कर लईए ते वाहिगुरु दी कृपा दे नाल फिर कूड़ झूठ अपने आप छुट जाएगा ते सच दी संभाल हो जाएगी। अज गुरुदेव जी ने अगले श्लोक विच जपण वालियां दे मुख नूं पवित्र किया है। जो भी शरीर उस परमेश्वर नूं आराधदा है लोक ते परलोक विच उस दी इज्जत आबरू रहिंदी है। अते पौड़ी दा भाव सतगुरु जी ने दर्शाया भी किते कोई भलेखा ना खा जाए कि जपण दा अर्थ सिर्फ किसी भेख विच बज के ही उसनू जपया जा सकता है। कोई भेख बना के ही रब दा प्यारा बनिया जा सकता है धर्मी बनिया जा सकता है भगत बनिया जा सकता है। गुरुदेव जी कहिंदे नहीं भेख नाल किसे पदार्थ नाल किसे दमड़े नाल किसे सियानप नाल वो वाहिगुरु वस विच नहीं आउंदा। वो परमात्मा प्रेम दी दौलत नाल कृपा दी दौलत नाल प्राप्त हुंदा है। इह सतगुरां ने अज दी पौड़ी विच दर्शाया। गुरु कृपा करे पावन श्लोक अते पावन पौड़ी दी विचार नाल आपां जुड़ना करिए विचार कर सकी रसना दी पवित्रता वास्ते उचार

बसावै ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मान विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सुभला प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अबेनासी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता। प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे। प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते आन दिन जाग। नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे। प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी। प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निःचल आसन। प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुन कार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जान जिन कौ प्रभ मया। नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच जह कुंठ जाते। हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो नानक की प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महापयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जप हो मन मेरे नानक पाव हो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध न परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनेक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तय पार पराही। अनक बिघन जय आए संगारै हर का नाम तत्काल उधारै। अनक ज्योन जन मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै।
ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु। जह महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ अकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदहरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मान तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुर मुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमे फिर चिर जीवै, महा उदास तपी सर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अशव है वर भूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमै मैल न जावै। हर के नाम सम सर कछ नाहे, नानक गुर मुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सियाणप जम का भौ ब्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै। शूट सनाही ऊब पयाल, मोह ब्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग एहो मैं शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सकल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रिष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर तन कौ तन तेरो नाऊ, निथावे कौ नाऊ तेरा थाऊ।
निमाने को प्रब तेरो मान, सगल कटा कौ देवहु दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गात मित जान हो आपे, अपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिह खट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण यार एनया सो प्रभ सदा समाल, जिन किया ते सचीत राख। नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण, चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया। बार बविस्था तुझे प्यार दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख अप्याओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कशु न बूजै, बख्श ले हो तौ नानक सीजै। जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बंता संग हसै। जिह प्रसाद पीवै सीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला। जिह प्रसाद भोकै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ ले हो प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार, ते स्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निध पावै, ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दरगह मान, तिसे बिसारै मुगद अजान। सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मन, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर तब प्रीत भस्म संग होए। अंध कूप में पतत बिकराल, नानक काढ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरह अथा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सहज सुमात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लिहो ओढ़ निभावै। कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कहिया तौ समझै पूरा। कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मने प्रतीत, काल न आवै मुड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मेत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुरबानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लागै आन सुआए। नानक कहू न सी जाई, बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक बस्त कारण बिखोट गवावै। एक पीना दे दस पी हर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर सिउ नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहू मन वूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगंत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान कश बहुर साहू ले, अज्ञानी मन रोस करे।
अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौरस का विश्वास न होवे। जिसकी वस्त तिसे आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मन है माथा, उस ते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लापट रहे हो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केहे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तहवै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साखत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जिह कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बाल बाल जाओ। रहत आवर काश आवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रबीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसका अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आपे आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यान पसगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहं मेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद, गुरुदेव अष्टपदी। जिहे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को राख मन माहे। जिहे प्रसाद सुगंधत तन लावह, तिस को सिमरत परमगत पावह। जिहे प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जिहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहो तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभावै। जिह प्रसाद सुख सेज सुई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिह प्रसाद तुझ सब को मन, मुख ताको जस रसन बखानै। जिह प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत सेती घर जावै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही, लिवलावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझ को न पहुचे, मन सा सा सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत कहु आस की जय। जिह प्रसाद असव हस्त सवारी, मान तिस प्रभ को कबहु ना बिसारी। जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए, प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई। तिसै त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है। जिह प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सासा चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पात्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै।
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਾ ਹੋ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਾ ਹੋ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਨੇ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਾਓ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ, ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਆਚਾਰਜ ਕਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਖਤ ਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਾਇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨੇ ਸੁਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਇਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਭ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਹਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यों पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मान होय प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाईए ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाईए, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अध्याखियर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की कत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कारै नानक ओ अपरस सगल निसतारै, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दरस, परत्रै रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत, कारण ना सुनै काहू की निंदा सब ते जानै आपस को मंदा, गुरप्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बेसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवे नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाचै केवल भगत कीर्तन संग रचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सार रस पीवै
उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सुखम मैं जानै असथूल चहवर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवर ना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उरतारै पास प्रेत मुगद पाथर कौतारै सर्व रोग का औखुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दासद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राख तैसा तिन नाओ आपे करन करावण जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसरियो आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारै कई कोट कब काब विचारै कई कोट नव तन नाम त्यावै है नानक करते का अंत न पावै है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्ब को हिरै कई कोट पर दुख ना करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाव हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंत्र कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससी अर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरा सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बहुजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खो जानते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगै सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुगत कीनो बिसुथार
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਾ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਣ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਤਹਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀ ਰਸਮੈ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ, ਬਹੁ ਲਸ ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ,
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਰਬ ਕਿਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ, ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ, ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ, ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਆਪੁਨੇ ਚਾਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਤੇ ਕੌ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜਿਉਂ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜਿਉਂ ਕਿਰਮਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਓ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਡਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ,
संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे तां लए मिलाए। संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी कितै काज ना पहुचै। संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन भी ज्यो आपे ही खाहे। संत के दुखी को आवर न राखण हार, नानक संत पावे तां लए उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पावक ई धनी त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहतो, संत का दुखी साध मिथ्या कहतो। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्यो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख न त्रष्ट कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्यावहो सास गिरास। सब कश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जान से सलोक। तजो सियानप सुरजनाओ, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखाओ, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे रखे एक आप, मानुक कै किशना ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। बडभागी ते जान जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनी संसार। मान तान मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, एत उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिने निरंजन जानया। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग त्यो हर जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन किया सा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया। जब देखाओ तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोईया सथूल। नह किश जन्मे नह किश मरे, आपन चले तो आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत राच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उधारण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेलै कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करे बड़ पागै। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर्मान। जो किश करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसै हर संग।
ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋਹੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀ ਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀ ਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਤਹਾਵੈ। ਜੀ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੇ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੇਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਜੋ ਕਾਸ਼ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਿਆ ਜਾਨ। ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਹ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਦ ਖੇ ਪਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ। ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਉ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਕੋਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੌ ਜੀਵਾਲ ਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੌ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਐ ਤੇ ਹੋ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਗ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਆਪੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਓ। ਮਨ ਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਖਿੰਨ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਾਧ ਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ, ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ,
ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭਿਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬੇਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ। ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖਾਣ।

गाऊ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चेत चेत वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ही है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चलय जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो ने धान जपै मन कोए सब जुग मै ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिश्राम कूट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम

सबा पिस चियार थापिया न जाए कीता न हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रेहा समाई गुरीश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विन पाने के नाए करी जेती सिर ठोपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी

जी को मन जाने मन कोई, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुह चोटा न खाई, मन्ने जम के साथ न जाई, ऐसा नाम निरंजन हुई, जी को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यो प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन हुई, जे को मन जाने मन कोई, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवह न भिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, ताओल धर्म दया का पूत, संतोख था परख्या जिन सूत, जी को बुझे हुए सचियार, तबले ऊपर किता पार, धरती ओर पर होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता हुए,

तिष्टे हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पक खाए, असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार हुए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बान, अखरा सिर संजोग वखान। जिन एह लिखे ते सिर नाहे, जि फरमाए तिव ते पाहे, जिता किता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतर सखेहे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइयै उह धोए। भरियै मत पापा कै संग, उह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। तीरथ तप दया दत्त दान,

मैं ना ही कोई विन गुण कीते भगत न हुए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाई पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजी आपे जाने सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सो है पाताल पाताल लख आगास आगास ओड़ कोड़क पाल थके वेद कहन कवातु सहस अठार कहन कतेबा असलू एक धात लिखा हुए था लिखी है लिखे हुए विनाशु नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही ती सुरत न पाईया नदियां तैवाह पवह समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन।

अंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्वत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परना डंड वाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामेय काम्य भुजंग प्रयाचन चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति स अधि स अदृश्य कृश भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आचिज देश के आ भिज भेष के आ गंज कर्म के आ भंज भरम के आ भिज लोक के आदित सुख के अवतूत भरण के बिभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि अदेव है के आप अपे वह के चित्रंग वहीन के कह अधीन कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गै भूल गैब है कि अफुल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फही में कि आकल अलाम के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलन दुलमकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजा की यकीन है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्ये सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निश्चिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमातं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं सरीक है मितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है
کہ رازق رہند ہے کریم الکمال.

हमारा, नमस्कार तिसि ही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जाबा कर्क करत हो कबू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताका करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा, अंड जेर से तजकीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकरी कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रचा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रच्छा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट रैं तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो, ताके ताव तनक मैं हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाच वसकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख तेले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को क्षय करता, श्री अस तुझ जा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाचत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल, सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रह, हो जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सहस गुण तीन कही जय, पाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया।

मते न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार बाहि गए की लाजे अस गोविंद।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੂ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੌਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਬਨ ਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸੁਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ, ਦਹ ਦੇਸਿਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸੁਵਾਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਰਾਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨੇ ਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠ ਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤੰਤ ਪੱਛੋ ਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਥੇ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਆਖੈ ਤਾ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੁਧੁ ਪਾਇਕ, ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ,
कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी। बिकम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा। बहुत नाही बोलना खन्निहु तिक्खी वाल हो निक्की इत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वा सुना सुमानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चलाहे त्यों चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे त्यों चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाहे। से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै त्यों चलावे एहो सोहेला। शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया ओ तिन कै मन वसिया जिन तुर हो लिखिया। एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने न पाया। कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जिना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटम्ब सहत स्यों पवित संगत सुबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसै जीव मलीन है कित संयम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए। जी अहो मैले बारहो निर्मल जी होता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है जो बेतालिया। कह नानक जिन सत जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जी अहो निर्मल बारहो निर्मल बारहो ता निर्मल जी अहो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कूड़ की सोय पहुंचे नाई मनसा सत समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले। जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। हुए ता सन्मुख सिख कोई जी अहो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात मैं समाले। आप छठ सदा रह परने गुर बिन वरन जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते वे मुख हुए बिन सतगुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होरते कोई पुछो बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग जरनी सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म हुवे हृदय तिना सुमानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आग वकानी। हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी। चित जिन कहर लिया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाउ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता पो पाए कह करता आपे हुकुम रताए। हुकुम रताया वेखै गुरमुख सह बुझाए। तूड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी।
तेह गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है एवड दाता ये अगन में आहार पहुंचावे उसनु क्यों पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक केवड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया गुण सभी को जे ही करते खेल रचाया जात सपाना ता जम्मिया परवार भला पाया लिब छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया ए माया जित हर विसर है मोह पजै भाओ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिब लागी तिनी विचे माया पाया हरे आप मुल कहै मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे बिटहु रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौपिया विचहु आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मने आए हरे आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर तेरा सुजानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी यो धन तिना मिलिया जिन हरे आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत किते जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिसे आए कह नानक होर अनरस अविसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभया गुम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सकिए सोग दुख ना व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभाव मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत तरी हर बिन वरण देखो कोई हर बिन वरण देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वि संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर इक है हर बिन अवर न कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई हे सर्वन हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सचल कविड़ानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो सच है सुनने नो पठाए हार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी कना दसवां द्वार दिखाया

0: तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दिया कर करोड़ सच्चे सुल्तान सच्चे सच्ची तेरे चित्त सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मृत मैं सो कच कच महला पहला
1: वड़ी वड़िया जाओ डाना वड़ी वड़िया जा सच न्याव वड़ी वड़िया जाने कथा वड़ी वड़िया जाने अलाव वड़ी वड़िया कुछ सब भाव वड़ी वड़िया जा कुछ नदा तो वड़ी वड़िया जा पिया नानक कारण कत नहीं जाए पिता करना शर्म न जाए महाकाल की।

गुरुवरी अंतरजा में सब आप जी धरती हाजिर पढ़ते हैं बेअंत गुरु सिख माई भाई गुरु आप जी बनते सत्कार जो बेअंत माया पिता प्रदेव जी बनते सत्कार जो बेअंत माया पिता प्रदेव जी सारण सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कुना प्यार बख्शना खजाने पर पुरखने सो आओ गुरु प्यारे साथ सिंह जी कीर्तन इनिक सेवा प्रवण करनी होया भुला चुका दिखिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम अमर जी दे श्री मुखवाक दे विचार सत आर्यो ज्ञानी परमजीत सिंह जी उन्ना पासो अज दे श्री मुखवाक दे विचार गुरु इतिहास सिख इतिहास सरण करे दसलो फतेह प्रवान कर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती पाशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्होंने दयावैता है सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दार दाते अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जा दे चाली मुकते हटिया जपिया टपिया जो नाम जपिया वंड चकिया देख चलाई तेग वाहे देख नेट किया तेना प्यारिया सत्यारिया की कमाई दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ए सही दिते बंध बंद कटवाए खोपरिया लवाईया चरखड़िया ते चढ़े आरे न चराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते गुरबानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे देखे सत्संग निभाया तिना की कमाई दाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे हों दाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चिता वह चित आवण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तरह देख ते की फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृत साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंदे बुंगे चुग चुगाटान धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मातु जी मत पात के राखे आप वाहे गुरु गुरु की प्रवाज पंथ सदा सहाय गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ छोड़ गया है उन्होंने खुले दर्शन की राह तुम आसमान का दान अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथदार दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना दरदार सिंह दरदार जी ने अपनी बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हुए संगत दर्शन दर दे के निहाल दरदार जी हो बेहद बाणियों के पाठ हुए इस वे रागी सिंह ने अपने चरण जासा की वारत कीतर कीते ने विद्वान भीर ने अज के हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी वे बाणी सोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपाता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी टाली बल बुद्धि बख्शिश करो गरीब महाराज इस खुशी में आप जी दख्शिया दाता पुत्र कलाब शादी देगा तैयार कर हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो गुरु जी महाराज आप जी बख्शिया दाता जो लंगना तुर से आजिया प्रबंध करनी दतार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैदी सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाडी कला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी बालता करो गरीब नवाज कृपा

करो जी। तथा जी इस वे धरती आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो, घड़िया ने खिलाओ संगत दर से तिर फुर पेटा प्रवान, शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरुआ कृपा करो सिख कौम खास संबंध न एक दस भाग प्यार की बख्शिश करके सत दार बख्शो, चैना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो, हर मैदान दीवान फतेह बख्शी का निगमता करो जी। गुरु गरीब नवाज दूर दुआरे कराए बैठिया लाइव कथा की सरण कर रही सारी संगत हाजरी प्रवान करो, घड़िया लिख लाओ तारा ने बख्शी की संगत तो बख्शी ने संगत आदि चरण धनबाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर सेवा संगत तार संगत माया बेटा कर चरना प्रवान करो, बच्चा ने कमाइया सबल करो, कार्य वाद भगतार सब संगत शुभकामना संबंध पूरी करो जी। तार मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो, पुनः रुकमाई बख्शो वित रुकमनामी बख्शे बेअंत तार लेड़ी वास्ते अज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो, शोध पित्र सेवा लाने की बात तार रेंदे कार सवार के चरण दुनिया बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें बनाया नाम जतावा नानक नाम चढ़ती करा तेरे पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भाई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल बोच है कोई शब्द मैं

काम ना आया। तीरथ नाए अर तरनी प्रमता, आगे ठौर ना पावै उहां काम ना आवै। एह बेद ओह लोग नहीं पति आवै, चतुर बेद मुख बचनी उचोरै। आगे महल ना पाईऐ बूझै नाही एक सुधाखर, ओ सगली चाख चखाई है। नानक कह तो एहो बिचारा, जे कमावै सो पार गरमी। गुर सेवहो अर नाम त्यावहो, त्यागहो मनहो गुमानी। गौड़ी माला पांजवा माधव, हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना होवै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रही है। रहाओ क्या किशु करै के करण हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लावहो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करहो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिवलावहो। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावहो। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दामोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो। भगत वशल तेरा बिरद रखाया जियो, पूरन सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो वताई बल बल जाई जियो, तिस नेव नेव लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बे

जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ ते आया सो शोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सुकरणी जियो, जन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिद तरिया जियो।

जियो, जस मिले मन जीव पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किश प्रभु का।

इहो निधान जपै वड भागी जियो नाम निरंजन एक लिव लागी जियो गुर पूरा पाया सब दुख।

सुख वसा सच शब्द निशान रहाउ। सबे गल्लां जातिया सुन कै चुप किया, कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया। दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूरख लोबिया मूल ना सुनी कहया। इकस दोह चहो क्या गणी, सब इकत साद मुठी। एक आद नाए रसिया डाका, विरली जाए उठी। भगत सच्चे दर सोहंदे, आनंद कर दिन रात। रंग रते परमेश्वर है, जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा माज, दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधी है पूरन सतु गुर ज्ञान रहाओ। जित घट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम आगाद। भये कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप। तत्ती वाओ ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दयो गुर।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होए विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह कै साधुका तरना इहो संसार पार ब्रह्म आराधी है उधर है सब परवार साजन बंद सो मित्र सो हर नाम हिरदय दे अवगुण सब मिटाए काय पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के चरण निधान नानक जाचक दर तेरा प्रभ तो दोनों मंगै दान एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग

जन नानक एहो खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नवा। साधु रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लखियो न जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बासु प्राणी, हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रह नाई। जो दिस सो सगल बिनास, ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जाने ओ मिथ्या, रहे ओ राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा, प्राणी कौ हर जास मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया मह। कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यो, एह बेद आप बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देख तास उठ तावै। भुगत मुकत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नौवां, साधो एहो मन गहेओ न जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर न रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के पीतर, जेहे सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिर लीना, तास्यों कश न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बेद बन आई। गौड़ी महला नौवा, साधो गोविंद के गुण गावो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिटेओ, जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा, को माई भूलो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन कर, निमख न हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावै। माया मोह महा संकट बन, तास्यों रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यों नेहु न लावै। नानक मुकत ताहे तुम मानहो, जिहे घट राम समावै। गौड़ी महला नौवा, साधु राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जे नाहेन, सो मूरत है देवा। सुरग नरक अमृत बेख, ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फोन तैसा। दुख सुख ए बादे जेह नाहेन, तेहे तुम जानो ज्ञानी। नानक मुकत ताहे तुम मानो, एह बेद को जो प्राणी। गौड़ी महला नौवा, मान रे कहा पयो तै बौरा। अहनिस औद घटै नहीं जानै, पयो लोभ संग हौरा रहाओ। जो तान तै अपनो कर मान्यो,
हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं काश तेरो रे नाहेन। देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारेओ, गोबिंद गत नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन सियो। बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहेया। निर्भय पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवां।

रहाउ। वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोतर रे। पावन नाम जगत मै हर को सिमर सिमर कासमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुकत का कर रे। नानक कहत गाए करुणा मैं भव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदी।

आओ। एक सुख मान्या सहज मिलाया, निर्मल बाणी भरम चुकाया, लाल पहे सुहा रंग माया, नदर पही बिख ठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रावे मन हर सिंह लागया, रस संग रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पौ भागया। साद रहे बादं अहंकारा, चित हर सिंह राता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा। तुझ बिन कोई न देखाओ मीत, किस सेवाओ किस देवाओ चीत, किस पूछाओ किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लेव लाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचाओ हर राय, भगत करी राचाओ हर नाय। सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज घर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, ज्योत पई ज्योति माहे समाना। लेख

नील अनिल अगन इकठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मह।

जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख बिचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुकत एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज घर व्याप रहया निज ठाई। उस तत करहे केते मन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर भाज नीता नीत। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, ना मन मरे न कारज होए, मन वास दूता दुरमत दोए। मन मानै गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण है वास होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै पार, मन मानै हर एकंकार। मन भूलो माया घर जाए, काम विरुद्ध रहे न ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए। गैवर

मन चांचल तावत फोन तावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावै गौड़ी ग्वारेरी महला पहला हौं मैं करतया नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बेगूते पावै दोए सो कमावै तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगै नाम बेसारी रहाओ अदेष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना।

माया मोह सर्ब जंजाला, मन मुख कुचील कुशित बिकराला, सत गुर सेवे चूकै जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूजै एक लेव लाए, निज घर वास

आए कथनी कथौ न आवे ओर गुर पुष देखिया नाही दर होर दुख सुख पाणे तिसे रजाए नानक नीच कहे लिवलाए गौड़ी महला पहला।

आया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुकम वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई। राह दोवै खसम

कीमत कौन रहै ले वलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करणी सार, जाप ताप

महला पहला खिमा गही ब्रातशील संतोखं रोग ना व्यापय ना जाम दोखं मुकत पये प्रभ रूप ना रेखं। जोगी कौ कैसा डर होए रूख बिरख ग्रह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन तिहावै

नर नेह केवल निरपौ नाउ अनाथ नाथ करे बल जाऊ पुनरप जन्म नाही गुण गाऊ।

काम क्रोध देख भूख प्यासा नानक बिरले मिल है उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरै पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठ सठ मजन चरण है धूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जिहवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन त्रिपतासिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूजे जगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूजै कोई कर किरपा रखो रखवाले बिन बूजे पशु पए बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो आन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन।

हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपे वै आप पुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाखश दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी।

सहस बाहौ मध कीट मह खासा हर नाखश ले नख हो बेधासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरासंद कालज मुन संगारे रकत बीज काल नेम बेदारे दैत संगार संत निसतारे आपे सतगुर शब्द बिचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच भगत निसतारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन कौ दुख पचै दुख होई जन मेजै गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै भरम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पशुतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीरज

पोता माता की आशीष, निमक ना विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। जदों घर विच बच्चा बच्ची जन्म लैंदे हन उदों तो ही इस समय की उड़ीक नानके दादके समूह परिवार कि साडा बच्चा बच्ची जवान होणगे छोटी गल नहीं, बड़ी वड्डी गल है, बड़ा लम्मा समा इस समय की उड़ीक करदे हन। अलग खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, सतगुरां ने अपार रहमत बख्शिश की दोहां परिवारां नूं, समूह रिश्तेदारां नूं ये खुशियां दे समय प्रदान किए हैं। आओ विआह दे जिहड़े वधाई दे शब्द हन उन्हां नूं

दसों पातशाह की आत्मक जोत। धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी का पावन पवित्र फुरमान है। लख खुशियां पातशाहियां जे सत

0: भी जी कीर्तन द्वारा समाप्ति है और यह पूजा चुका दी आप जी क्षमा बख्शिश करनी विद्वान गुणी जन संगत विच उपस्थित हन तो जाहिर है अज असी अनजान हाँ तो कोशिश है कि होर सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन कर सकीए शुद्ध राग दे नाल शुद्ध बाणी दे नाल आप जी नूं कीर्तन सुना सकीए ये मनोरथ है साडा तो आप जी असीस बख्शिश करनी पुला चौका दियां साडे कोल खिमा बख्शिश कर देनियां तो आप जी फतेह अर्ज करते हां वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।